नहीं नहीं नहीं रचति दुःख करने नहीं नहीं रचति दुःख करने जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद ज